दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे और वक्त की रेत में दबकर फना हो गए, मगर मैं आज भी जिंदा हूं।

0: हाय
1: यस कम ऑन बेबी डांस कर ले तो रोमांस कर ले कम ऑन बेबी डांस कर ले तो रोमांस कर ले
2: शट अप

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

आज प्रभु आएंगे, आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा, केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, एक शर्त है। प्रभु ने पूछा, शर्त क्या है? केवट ने कहा, प्रभु पहले अनुमति दें

राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। वनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को,

तो सेवा का अवसर मिला है। भगवान राम बोले, केवट ले लो, ये मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

छोड़ी तकरारों में, रोका टोकी वाले यारों में, छुपे छुपे से इशारों में ही जिंदगी है कहीं।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3030 ब्रेडफोर्ड 7230-3030।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
0: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दालां, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: के लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

ये रुद्राक्ष मेरा है। इतने हजारों साल बाद आज ये मेरे लिए निकल आया है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका असली हकदार

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01 274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
0: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
0: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देती है। अगर आप डीएपी पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, रीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं और कुछ दिनों के बाद आप ढाबी में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो जनाब आप www.sunriseradio.fm पर आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों साथियों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप हमारा जरूर साथ निभाएंगे। दुबई तक मिला और आपका साथ होगा, मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। आज ब्रेडफोर्ड में काफी बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो गाने ठंडे ठंडे नहीं होंगे जनाब, अच्छे अच्छे गाने होंगे। तो चलेंगे जनाब प्रोग्राम को शुरू करते हैं गीत के साथ, लेकिन इस गीत से पहले कमर्शियल होगी। माजे चाहते हैं गीत नहीं होगा, अभी कमर्शियल होगी और कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे, उसके बाद एक प्यारा सा गीत सुनेंगे हिट ऑफ द आवर की शक्ल में जो सभी दोस्तों के नाम होगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद छोटी सी इवेंट्स डायरी, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: 24 hours a day. 103.2. This is Sunrise Radio.
5: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
6: Looking ahead to the weekend, here's what's happening. First, in Bradford, Michael Flatley's Lord of the Dance 30th anniversary tour arrives at Bradford Live, with performances running through the weekend. Also in the Bradford district, the Glenn Miller Orchestra comes to St George's Hall on the 13th of June, bringing the sound of the big band era back to the city. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, showcasing contemporary analogue photography. And still in Halifax, Peppa Pig's Big Family Show comes to the Victoria Theatre on the 13th and 14th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena across the weekend. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry, inspired by the remarkable life of Halifax landowner Anne Lister. Over in East Lancashire, The Journey 21st Anniversary Choral Evensong takes place at Blackburn Cathedral, celebrating the choir's anniversary. In Derby, events continue as part of the city's 50-50 celebrations, marking Derby's international partnerships and cultural links. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, is at Milton Keynes Theatre from the 8th to the 13th of June. And finally, in West London, the London Festival of Architecture continues across June, with events taking place in Hammersmith and across West London. And that's your Sunrise Radio event diary.

जी दोस्तों साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए। हीरा खान साहब फोन करने का शुक्रिया और नदीम मंसूर साहब आप भी फोन कर रहे हैं जनाब, आपके नाम भी जरूर करते हैं ये गीत। वाजिद भाई एडिस्टिल से आपने फोन किया, शुक्रिया आपका भी। और जनाब मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, उमेर, बाबर और इफराज आपके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, और साइमा जी आपके नाम भी।

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:46, यानी के 46 मिनट्स पास्ट 11। तो जनाब नदीम मंसूर साहब, आपसे गपशप हुई, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब जो कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा, आपके नाम होगा। हीरा खान साहब आपके नाम होगा, वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपके नाम होगा, महबूब अलाई साहब और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब और सफीउल्लाह भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम होगा जो भी इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: Sunrise Radio, Sunrise।
3: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
4: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सलमा आगा की आवाज में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और नसरीन सभा आपने फोन किया, आपने कहा कि ये आपका फेवरेट गीत है, तो आपके नाम किया जनाब, शुक्रिया फोन करने का। और इसके बाद आने वाला गीत भी बड़ा प्यारा है, थोड़ा स्लो सा गीत है लेकिन बड़ा प्यारा गीत है, अच्छी सी शायरी के साथ है। उम्मीद रखूंगा आप सभी दोस्त जो इस वक्त संडा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, आप सभी इंजॉय करेंगे इस गीत को, अच्छी सी शायरी है। थोड़ा सा अगले आवर में कोशिश करेंगे धूम धड़के वाले गीत हों जनाब, स्लो स्लो काम जो है ये अच्छा नहीं है, मौसम भी बाहर ऐसा है और जो दोस्त अंदर बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं या चाय वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जनाब हम नहीं चाहेंगे कि मौसम की तरह आपको बिल्कुल स्लो कर दें, तो कोई मस्ती भरे गीत होंगे ज़रूर करेंगे मस्ती भरे गीत पेश अगले आवर में। फिलहाल आने वाला जो गीत है अच्छा गीत है, थोड़ा स्लो गीत है, जैसा मैंने कहा अच्छी शायरी है, तो आप सभी सुनने वालों के नाम करूँगा जो इस वक्त संडा रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त संडा रेडियो को सुन रहे हैं।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि जनाब आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें। तो दोस्तों चलते हैं प्रेम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले फोन करने का शुक्रिया जनाब। हिट ऑफ द आवर का गीत आपके नाम करूंगा, आपके साथ साथ इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी अजरा जी आपके नाम और इसी गीत को मोना जी आपके नाम और यही गीत नजर करना चाहेंगे सभी सुनने वालों के नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, बहुत ही प्यारी सी शायरी के साथ। इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 12:13, यानी कि 12:13। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। लियाकत भाई, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ इसी गीत को इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, जनाब बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी करेंगे। और जनाब इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है और इरा खान साहब, आपने दो बार फ़ोन किया, माज़ चाहते हैं आपकी कॉल में नहीं ले पाया। तो एनीवे आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा। नजमा साहबा, इफ़त, नाजिया, मीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताज़ीम, ज़ायदा, साइमा, आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, और साइमा जी आपके नाम, और अपने जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम, इकबाज़ मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इब्रार, सब के नाम, इफराज के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, इंजॉय कीजिएगा।

जी दोस्तों, अभी आपने क्या प्यारा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं जनाब एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग आप दोस्तों की नजर करता हूं इस उम्मीद के साथ का आप सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कितना प्यारा गीत सुना और अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद एक पंजाबी का गीत जनाब आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे, और ये गीत फेवरेट है प्यारी बहना सादिया जी का, उनके नाम आजरा जी के नाम, और यही गीत फेवरेट है जनाब इकरा जी का, और वो भी सुनना चाहती हैं नजमा इफ़त नाजिया हमीदा रुबीना बुशरा ताजीम जायदा और साइमा के लिए, और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं उनके नाम करेंगे। चौधरी मनीर साहब चक्की वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, पंजाबी का गीत वो सुनना चाहते हैं, और मलिक इम्तियाज़ साहब जनाब आप भी फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि पंजाबी के गाने का जिक्र किया, तो दोस्त जो पंजाबी के गाने पसंद करते हैं फौरन उन्होंने मिस कॉलें दी कि भाई हमारे नाम भी कीजिएगा। तो चौधरी मुनीर साहब आपके नाम करते हैं, बड़ी प्यारी कवाली है जनाब पंजाबी में, कई बार मैं अपने प्रोग्रामों में शामिल कर चुका हूं, और मलिक इम्तियाज़ साहब शुक्रिया आपके साथ हैं इस वक्त। इकमाज मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लादिता उमेर बाबर इफराज और तमाम दोस्तों के नाम करते हैं, तो चलिए तीन शहजादे जो बाबर शाह पे काम कर रहे हैं उनके नाम भी कर देते हैं, वो अभी मिस कॉल करना शुरू कर देंगे कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं लिया। तो बिशारत अली सिकंदर अली आरिफ अली आपके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे, तारिक जुल्फी साहब स्पेशली आपके नाम और लियाकत भाई आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं छोटी सी कमर्शल है, तो उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, बल्कि गीत सुनेंगे उसके बाद लेंगे, तो एंजॉय कीजिएगा गीत को जनाब।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.

0: उस्ताद जोजी अली खान और साथियों की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना और सिकंदर अली आपने फोन किया कहने लगे कि भाई जनाब अब बाहर बारिश हो रही है तो कोई बरसात का भी गाना लगा दो तो जनाब लगा देते हैं, ज़रूर लगा देते हैं, आप हुक्म करें जनाब। तो अभी कमर्शियल का टाइम हो गया है और सदा बहार पुराने गीत की बारी आ गई है तो वो भी बरसात का ही होगा और फिर जनाब बरसात के बहुत सारे प्यारे गीत हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं है तो क्या करें जनाब। तो एनीवे अब चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: जी दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:42, यानी कि 12:42। तो जनाब बात हो रही थी बरसात की, तो चलते हैं जनाब बरसात का ही कोई गाना लगाते हैं। बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली आपके नाम जनाब, और अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे, चौधरी मुनीर साहब, चक्की वाले और हीरा खान साहब, ताज जुल्फी साहब और महबूब लाई साहब और जनाब नदीम मंसूर साहब और वाजिद भाई एडसविल से, सफीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद छोटा सा प्यारा सा बरसात का गीत सुनेंगे, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
6: We love Sunrise Radio.
7: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
8: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
9: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा सदाबहार गीत सुना, अब बरसात की बात हो रही है तो चलते हैं ये गाना भी सुन लेते हैं। आर्य भाई आप खुश हो जाइए, बरसात के गाने आ रहे हैं आपके लिए। सिकंदर भाई आपके लिए। आर्य

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना रिलेटेड टू बरसात जनाब, बारिश। तो अब्दुल करीम साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने जो फरमाइश की है ज़रूर पूरी करेंगे आप, क्योंकि गाना मैंने क्यों करके रखा हुआ है, ये जो सिकंदर अली है ना, ये तंग करते हैं मुझे। तो बार बारिश हो रही है तो मुझे कह रहे हैं बारिश के गाने लगाओ, तो जनाब इस वजह से, वरना अभी लगा देता। लेकिन अगले आवर में अब्दुल करीम साहब आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूंगा और दीगर तमाम दोस्तों की फरमाइशें भी पूरी करूंगा अगर कोई करना चाहे तो। बाकी ये मस्ती भरा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं, तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं जनाब। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहले दो हिस्से जो हैं आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी इस आवर में जो आखिरी आवर है इसमें अच्छे और प्यारे से गीत आपके लिए पेश किए जाएं। अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत जनाब अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल से, शुक्रिया फोन करने का, आपके नाम करते हैं। मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम करते हैं, और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले आपके नाम करते हैं, हीरा खान साहब आपके नाम, और जनाब नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: सनराइज रेडियो हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो। सनराइज रेडियो हिट ऑफ द आवर।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अर्षद महमूद की प्यारी सी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं, इस वक्त टाइम हुआ है 1:13, यानी कि 1:13। तो चलते हैं जनाब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, आप एक और जो है जोशीला सा गीत सुनेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

दो प्यार भरी आवाजों में आपने ये मस्ती भरा गीत सुना। और दोस्तों अब चलते हैं अगले गीत की जाने। बड़ा प्यारा गीत है, उम्मीद रखता हूँ आप सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे। बड़ा मज़े का गीत है और बड़े अरसे बाद ये गीत मैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आपने प्यारा सा गीत सुना जनाब, और इसके साथ ही आप वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, और अब कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो जनाब चलेंगे कमर्शियल की जानेब, कमर्शियल के बाद सुनिएगा गीत, और उसके बाद आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

कुमार सानू की आवाज में दोस्तों आपने ये सुरीला सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। आप चलते हैं अगले गीत की जानिब। ये भी प्यारा सा गीत है, आप प्यारे दोस्तों के लिए सभी की नजर करना चाहूंगा। एंजॉय कीजिएगा इस गीत को भी।

जी दोस्तों, अभी आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे, माजर चाहते हैं आपको पूरा नहीं सुना पाएंगे क्योंकि हमारे एक प्यारे से हैं शफीक भाई, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद जोहर की अजान का वक्त हो जाएगा, तो मैंने सोचा उनका गीत जो है वो प्ले कर दूं, जिसकी उन्होंने फरमाइश की, क्योंकि ये गाना तो आधा तो आपने सुना। तो शफीक शुक्रिया फ़ोन करने का, आपने कहा आप रहीम के लिए गीत सुनना चाहते हैं और आपकी पसंद का गीत आपने फरमाइश की, आएगा मज़ा बरसात का, तो आपके नाम करते हैं। और ताई दुखी साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपने भी फ़ोन किया, प्रोग्राम में शमूलियत की, तो आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और आप जंगीर भाई, मेहताब हुसैन और जीशान के लिए गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम भी करेंगे। तो शफीक, आप अपनी पसंद का गीत इंजॉय कीजिएगा, आपने रहीम के लिए सुनना चाहा था।

कोई पता नहीं क्या हुआ, सिस्टम जो है ये ऐसे बिल्कुल ही जवाब दे गया जनाब। और अब क्या है कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि जो अजान थी वो भी गायब होगी। तो अब हमें अपनी तरफ से कोई आप के लिए, दोस्तों के लिए जोहर की अजान प्ले करनी पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले जोहर की अजान सुनते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और बेसिकली कुछ इससे पहले कुछ ऐसा झटका लगा कि सब कुछ कंप्यूटर में उड़ गया, दोबारा उसको ऑन करके तो किया। चलिए, ऐसा होता है कभी कभी। तो चलते हैं, पहले जनाब ऐसा करेंगे कि जो है वो टाइम चेक कर लेंगे और देखेंगे इस वक्त हमारी और आपकी घड़ियां हमारे दिलों की तरह मिली हुई हैं या कोई फर्क आ गया है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:46, यानी कि 1:46। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक सदाबहार पुराना गीत, वो होगा भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब मानचेस्टर से। आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। ताज दुखी साहब और अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑलो वाले और मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, हीरा खान साहब, तारी जुल्फी साहब, लियाकत भाई और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, नदीम मंसूर साहब, वाजिद भाई एड्रेस फील्ड वाले, सफ़ीउल्ला भाई और तीन शहज़ादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी, आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: 24 hours a day, 103.2. This is Sunrise Radio.
3: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
5: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
6: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
5: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
6: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

जी दोस्तों साथियों, अभी आपने लता जी और मुकेश की आवाजों में प्यारा साकी सुना। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात संडे मॉर्निंग को होगी सुबह 11 बजे। तो मुझे आमिर सिलात को इजाजत दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह निकबान एंड गुड बाय।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
0: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
0: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
1: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
1: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। लाख बुलाना चाहूं फिर भी नहीं बुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा मैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Today

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंश्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: पड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230-30, दस ब्रैडफोर्ड 7230-30।
4: Ladies and gentlemen,
5: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: Number one.

मार्च की आखिरी अनाउंसमेंट पेश कर रहे हैं आओ भाई बैराम जी बैरफले मैंशन के लाडले ऋतिक रोशन का ये सोलो आइटम।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30।
4: Ladies and gentlemen,
5: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: Number one.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दस ब्रेडफोर्ड 723030।
3: Ladies and gentlemen,
4: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: Number 1.

हाँ लिसनर्स वेलकम बैक, होप यू एंजॉयड दैट वन। जरा नजरों से कह दो निशाना टूट ना जाए, बाय द बॉम्बे वाइकिंग्स हियर ऑन सनराइज रेडियो। जी हाँ लिसनर्स, इफ यू लाइक द सॉन्ग देन गिव इट अ थम्स अप वाया द सनराइज एप एंड डू लीव अस योर फीडबैक हियर एट सनराइज रेडियो। हैप्पी थर्सडे गोइंग आउट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, होप यू आर एंजॉयिंग योर थर्सडे व्हाटएवर यू आर डूइंग। जी दैट व्हाट इज द वेदर डूइंग, द वेदर इज अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग टुडे इजंट इट, अ बिट ऑफ रेन, अ बिट ऑफ सनशाइन एंड विंड। So, you know, that's it. It's only in the UK you can get the that sort of weather. Okay, so listeners, the next track which I have ready, I'm going to dedicate to the lovely girls, to Sonia, Kieran, and Surinder that got in touch from Bradford. Lovely to hear from all of you. You were saying, please play any track from the movie Omkara, the 2006 movie. So I've picked this one, Sneedi Chauhan and Sukhvinder Singh on the vocals.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कफ्सन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम इन ब्रैडफोर्ड?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288252 today to arrange your viewing.
3: You are listening to Sir.

0: लड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Looking for your dream home in Bradford?
4: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
4: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
4: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: दिला दे घर बना दे घर, दिला दे घर।
5: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

My pals, my buddies, my friends, today we've all graduated. पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है. आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहां होंगे. I'm really sad, this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you. We'll really miss you, miss

0: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.